सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूं मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम।

गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। अभी आपने कार्यक्रम सुना फिल्म संगीत। दोस्तों थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
1: डियर साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: Radio DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आप

0: साथ है।
1: हेलो
2: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: तुलसीराम जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
2: चांद से पर्दा कीजिए।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो।

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए सर।
0: सचिन
1: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: यारी
1: सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का यारी सॉन्ग।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: पुष्पेंद्र मीना।
1: पुष्पेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: चिंता ना कर पगली, दूल्हा ऐसे चलेगा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से।

0: नमस्ते सर।
1: नमस्ते, नाम बताएं आपको?
0: मोहम्मद यासीन।
1: मोहम्मद सर कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: पाल से।
1: अजी
0: पाल से सर।
1: अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं वीडियो से आप?
0: ये जो तेरी पायल की छन छन है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर आपका।
0: सर मेरा नाम है अय्यूब सलमानी।
1: सलमानी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: धूलीगढ़ गंगापुर सिटी से सर।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर आज गाना सुनना चाहते हैं पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आके नाम
1: सुना रहे सर।

0: मेरा नाम समता जादौन है, मैं बाढ़ कला से बोल रही हूँ।
1: समता जी बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
0: मुझे को गाना सुनना है, फिल्म का नाम है 10 लाख, गाने के बोल है गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा।
1: बिल्कुल सुना रहे समता जी आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: बाबू
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर जी की।
1: बताएं बाबूलाल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: दिले लगान तुझे हुआ क्या है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का सॉन्ग।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर, यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: नमस्ते सर।
2: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका?
1: पलक।
2: पलक जी कहां से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
2: पलक जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: गहरे पानी की मछली।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं पलक जी आपकी फरमाइश का ये गाना।
1: थैंक यू।

0: जी नाम बताएं।
1: खुशी पूजा।
0: खुशी जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: क्या?
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं गुड़िया कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: तेरी मावट ने दिन पातल बुलाया जंगल में।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ही सॉन्ग।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, नाम बताएं
6: सर। वो चला दो।
5: आपका आपका नाम बताओ पहले।
6: अमन मीणा।
5: अमन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
6: सपोटरा।
5: अब गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
6: बुलिया।
5: बुलिया
6: हाँ
5: बिल्कुल, चला रहे हैं सर आपके समय इसका।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.7।
1: हाँ जी सर, हम क्या है?
2: योगेश जांगड़े भी मैं तेरा छत्तीसगढ़।
1: कहाँ सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: पड़ोसन से सुनवा देंगे, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।
2: धन्यवाद।
1: यू वेलकम।

0: गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मैडम जम्मू से केशव शर्मा, सुषमा रानी और साथ में मेरे दोस्त हैं यूपी के हैं विजय पांडे जी, राजस्थान से हैं पूर्ण वर्मा जी और गोल्डी भैया जी हैं हिमाचल प्रदेश.
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैडम आज गाना सुनना है मैडम, मैंने मेरे सजना साथ निभाना सुनना है.
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी
0: सजना. तो गाने के बोल है कंगना पुकारे कंगना, सजना पुकारे तेरा नाम, देखो मैं सुबह शाम.
1: ओके सर, तुम्हारे हाथों फरमाइश पर ये गाना.
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू.

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: रफीक खान।
1: हाँ, बात कर रहे हो?
0: तुम अजी के पीछे से
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: वो आज भी दिल के पास है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: लतीफ अहमद रेना, कश्मीर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मोहम्मद रफीक की आवाज में सुनाइए।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: संजय सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: 90 रुपए की गोली अमित सैनी का गाना है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना।

0: जी नाम क्या है आपका?
1: वंदना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: ना रात हूँ मैं ना दिन हूँ मैं।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: राहुल बोल रही हूँ।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: हरियाणा से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जिंदगी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करो।

वक्त हो चुका है 11:14 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस।
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
4: हेलो।
5: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: मेरा नाम आयुष शर्मा है।
5: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
4: मैं गंगापुर सिटी हाल गोडाउन से बात कर रहा हूँ।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
4: मैं मन मेरा सॉन्ग सुनना चाहूँगा।
5: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करेगा।
4: हेलो मैम।
5: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर से मोड़ से बात कर रहे हैं।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
4: मेरा वो वाला होता मन मेरा।
5: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करेगा ना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जगदीप।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: पंजाब।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: पंजाबी गाना है हिंदू तेरी शान बदले।
1: कौन सा?
0: हिंदू तेरी शान बदले।
1: ओके सर, सुना रहे हैं। फरमाइश करिएगा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए।
2: हेलो
3: सर, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते दीदी।
3: सर नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम गंगाधर सावनकर।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
2: कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: दयावान फिल्म का वो गाना है, देखो मरने वाला।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:36 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है नेट कॉलिंग द्वारा। दोस्तों नोट कॉलिंग द्वारा हमारे पास कॉल किया है एक धर्मवीर दयाल नगर से। दोस्तों हमारे पास धर्मवीर दयाल नगर से कॉल किया है और इसी गाने को सुनने के लिए हमारे पास कॉल नेट कॉलिंग द्वारा हुई है सुमन शर्मा, जिन्होंने अपने फ्रेंड के लिए एक गाना डेडिकेट किया है। सुनते हैं इन दोनों की फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते, तो नाम क्या है आपका?
1: धर्म सिंह बोल रहा था, पटेल नगर अंगापुर सिटी से। पटेल नगर अंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर
1: आप? ओल्ड गाना सुना दो कोई सा भी।
0: ओके सर।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हेलो,
0: नाम क्या है आपका?
1: हिमांशु।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जंगल खुशी की।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: डांडन और वाला का।
0: कौन सा डांडन होने वाला? कौन सा?
1: अप टू
0: अप टू

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 रेडियो
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी 90% से अधिक 110 विद्यार्थी 85% से अधिक 251 विद्यार्थी 80% से अधिक 407 विद्यार्थी हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा यशांसी सिंगल अदिति मीना अश्विनी दोई सोनम मीना शुभम मीना खुशी गर आकाश कुमार मीना प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र एग्जाम कोई भी हो डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9 10 11 12 विद साइंस स्ट्रीम DS Science Academy, FCI Godown, Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-1311.

0: हेलो। हाँ जी
1: हेलो।
0: आपका
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: पूनम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: सागर जैसी आंखों वाली।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: जरूर

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: साजन।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? हेलो, नाम क्या है आपका?
1: सुशीला देवी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: करौली वाटक गंगापुर की।
0: अब कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अंकित।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: पहले भी मैं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: टीना,
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: करौली फाटक।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: मेरी कुटिया में राम आए, राम आए।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: रवीत।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: दिल पे
0: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: बात कर रहे हो कार्तिक जी?
1: गंगा पुफी की।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: रशियन।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: Man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear.

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: गुड आफ्टरनून गंगापुर सिटी, मैं आपका लड़ू दोस्त रेसी मीना। दोस्तों, फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। दोस्तों, अभी आपने सुना हेलो फरमाइश कार्यक्रम रेडियो डीएस के माध्यम से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दोस्तों, थोड़ी देर में आरंभ होगा आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026 हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा हम क्या देते हैं AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27
3: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण डॉक्टर या इंजीनियर IAS या RAS राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन आज ही एडमिशन कराएं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500 प्रवेश प्रक्रिया आरंभ सीमित सीटें पहले आए पहले पाए
4: दोस्तों इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना दोस्तों अब सुनते हैं हम चंद्रवीर और श्याम सिंह राजावत जी की ये भेंट वार्ता दोस्तों बताना चाहूंगा चंद्रवीर जी राजावत जी और श्याम सिंह राजावत जी दोनों ही राजस्थान के जाने माने खिलाड़ी हैं और मेडल प्राप्त किए हुए हैं
5: साहब
6: अच्छा
5: उन्होंने
7: को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मेहमान के रूप में श्याम सिंह राजावत जी निवासी न्यू जवार कॉलोनी खींगला सवाई माधोपुर से दूसरे मेहमान के रूप में पधारे हैं हमारे पास खिलाड़ी चंद्रवीर सिंह राजावत जी निवासी बाल मंदिर सवाई माधोपुर से कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत है नमस्कार जी
8: नमस्कार सर
7: तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्याम सिंह राजावत जी से श्याम सिंह जी आपकी खेल जगत की शुरुआत कहाँ से हुई है
8: सर जब मैं 12 साल का था तब से हैंडबॉल खेलना शुरू किया
7: जी
8: स्टार्टिंग से सब जूनियर टूर्नामेंट खेले कई सारी जूनियर भी खेले हम लगभग 30 से 35 चैंपियनशिप खेली मैंने
9: अभी तक ठीक है हम खिलाड़ी के साथ साथ कोचिंग भी दे रहे हैं बच्चों को
7: जी
9: तो हम छोटे बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं वो भी हर साल यहाँ से बाहर जा रहे हैं ठीक है मेडल ला रहे हैं अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं और निरंतर प्रतिभाएं बाहर निकल रही है सवाई माधोपुर से
7: बिल्कुल अच्छी बात है अच्छा चंद्रवीर जी आपकी शुरुआत कब और कहाँ से आरंभ किया आपने खेलना
10: सभी को नमस्कार खेलने का तो ये हिसाब से बचपन में जब एक बार गलियों में कॉलोनियों में खेलना शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे वहीं कोई किसी को देखते हैं और उनको अपना आइडियल बनाते हैं ऐसे समय पे सलाह देने वाले मिल जाते हैं कोचेज मिल जाते हैं तो वो खेल को निखारते हैं तो अमूमन 6वीं 7वीं 8वीं क्लास से जो टीचर थे हमारे शिवदयाल जी भाड़ साहब मनटाउन स्कूल में जो PTI थे उन्होंने मुझे पहली बार देखा मेरे को टीम में लिया
7: जी
10: उसके बाद ये सफर चलता रहा जो आज तक चल रहा है
7: बिल्कुल अच्छा हैंडबॉल आने से पहले आपको कहीं से प्रेरणा मिली श्याम सिंह राजावत जी
8: सर स्टार्टिंग जब सवाई माधोपुर में हम खेलना शुरू किया था तब चंद्रवीर सर की कोच थे हैंडबॉल के
7: अच्छा, आज गुरु चेला दोनों सर
8: उन्होंने स्टार्ट किया था तब से हम आज तक हैंडबॉल खेल रहे हैं और खिला भी रहे हैं बच्चों को तैयार कर रहे हैं उसके बाद राजस्थान लेवल पे बात करें तो आपके प्रियदीप सिंह जी है जो अभी काउंसिल में कोच लगे हुए हैंडबॉल के उन्होंने भी काफी सहयोग मिला उनसे सीखने को काफी कुछ मिला और सबसे पहले उनकी आज काउंसिल में वो कोच लगे, सबसे पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुरी थी।
5: अच्छा।
8: तो उन्होंने यहाँ 3-4 साल तकरीबन रहे, काफी कुछ बच्चों को सिखाया, ग्राउंड चलाया, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला।
5: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चंद्रवीर जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आपके गुरु कौन है आरंभिक, और इस खेल में कैसे आपकी रुचि बढ़ी है?
10: खेल में जब मैं कॉलेज में था, वहाँ कॉलेज में जब ग्रेजुएशन में था, तो वहाँ हमारे सर थे और दोस्त लोग थे जो उन्होंने कहा हैंडबॉल में बुलाया। बेसिकली मैं खेलता फुटबॉल था और उन्होंने मुझे बुलाया हैंडबॉल में। तो हैंडबॉल की स्पीड और हैंडबॉल का मतलब एक कह सकते हो बड़ा फास्ट गेम है
5: जी,
10: तो उसको देख के मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ और फिर मैंने कहा यार खेलते हैं, खेलने लगे। फिर उसमें बूस्ट अप कर दिया कोच प्रियदीप सिंह जी ने, जिनकी पहली पोस्टिंग 2011-12 में राजस्थान काउंसिल में कोच की भर्ती, उसमें वो चयन हुआ उनका, उनकी पहली पोस्टिंग सवाई माधोपुर मिली उनको
5: जी।
10: तो वो उनको देख के, उनका चार्म और वो खुद इतना अच्छा लेवल के प्लेयर थे, तो उनको देख के हम भी सोचा कि ऐसा तो बनी जाए, ऐसा नहीं तो कुछ तो बनी सही इनके जैसा। तो वहाँ पे फिर हम इस गेम की तरफ मूव करने लगे।
5: बिल्कुल, सफर तो चलता रहा। जिंद्रवीर जी, आज हम देखते हैं कि आपका बचपन से लेकर अब तक का जो भी मैच था, उनमें सबसे यादगार कोई पल अगर आपका रहा हो तो वो थोड़ा सा हमें बताएं।
8: हाल ही में सर सीनियर चैंपियनशिप खेलने गए थे हुगली, वेस्ट बंगाल
5: जी।
8: वहाँ सर क्वार्टर फाइनल एक मैच चल रहा था हमारा, जो यूपी वर्सेस राजस्थान का चल रहा था। वो मैच में एक एक सेकंड सांसें रोकने वाला मैच था। एक यूपी के कोच थे तोहित सर, जब लास्ट 3 सेकंड बच रहे थे तब तोहित सर ने टाइम आउट लेके
5: जी
8: और एक गोल राजस्थान पे करवा के मैच बराबर कर दिया।
5: तो
8: मतलब एक वो बेहतरीन लेवल की कोचिंग देखने को मिली, बेहतरीन लेवल का मैच देखने को मिला
5: जी।
8: मतलब बैक टू बैक, नेक टू नेक फाइट चल रही थी लास्ट
5: जी।
8: तक
5: जी।
8: फिर 3 सेकंड खत्म होने के बाद मैच टाई हो गया, फिर 2-2 सेकंड का वापस टाइम दिया एक्स्ट्रा टाइम
5: जी,
8: उसमें 2 गोल की लीड करके राजस्थान जीती। तो सर मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच वो था।
5: अच्छा अनुभव आप लेके बैठे हैं
8: जी।
5: अच्छा चंद्रवीर जी, आप बताएंगे कि अब जो एक सफल हैंडबॉल के खिलाड़ी बनने के लिए मतलब बालकों में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए?
10: बिल्कुल साहब, सफल खिलाड़ी बनने के लिए आपको पंक्चुअल,
5: समय का
10: बिल्कुल आप पंक्चुअल रहे ग्राउंड पे, और डेडिकेशन आपका होना चाहिए और खेल के प्रति प्यार होना चाहिए।
5: बिल्कुल सही बात है,
10: जब तक आप उस चीज से प्यार नहीं करोगे आप उस वो आपको चीज नहीं मिलेगी
5: हासिल।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ बीट

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों 1:17 का समय हो चुका है। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आप मेरे साथ सुन रहे हैं नए तराने कार्यक्रम। दोस्तों नए तराने कार्यक्रम में आज हमारे साथ विशेष भेंट वार्ता में श्याम सिंह राजावत जी और चंद्रवीर सिंह राजावत जी की ये कुछ अंश।
1: फिर 2-2 सेकंड का वापस टाइम दिया, एक्स्ट्रा टाइम
2: जी,
1: उसमें 2 गोल की लीड करके राजस्थान जीती। तो सर मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन मैच वो था।
2: अच्छा अनुभव आप लेके बैठे हैं
1: जी।
2: अच्छा चंद्रवीर जी, आप बताएंगे कि आप जो एक सफल एंड बॉल के खिलाड़ी बनने के लिए मतलब बालकों में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है, क्या क्या योग्यताएं उसमें होनी चाहिए?
1: बिल्कुल साहब, सफल खिलाड़ी बनने के लिए आपको पंक्चुअल
2: समय का,
1: बिल्कुल आप पंक्चुअल रहे ग्राउंड पे, और डेडिकेशन आपका होना चाहिए और खेल के प्रति प्यार होना चाहिए।
2: बिल्कुल सही बात है।
1: जब तक आप उस चीज से प्यार नहीं करोगे आप उस वो आपको चीज नहीं मिलेगी,
2: हासिल ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, और कोच आपके भले के लिए ही बोलता है, आप उसको अदरवाइज लेते। जिसने कोच की बात को आंख बंद करके फॉलो किया वो बच्चा रुक ही नहीं सकता। ऐसे 50 उदाहरण है, जो माधोपुर के भी 10-20 उदाहरण है और बाहर के भी है, जो आज बहुत अच्छे लेवल पे हैंडबॉल खेल रहे हैं।
2: अच्छा,
1: बहुत अच्छे लेवल पे, सिर्फ इसलिए कोच की बात को उन्होंने फॉलो किया। कोच हमेशा बच्चे को सही सलाह और सही गाइडेंस ही देता है।
2: बिल्कुल सही है, देखो मार्गदर्शन बहुत जरूरी भी होता है। करते हैं श्याम सिंह राजावत जी, आप बताएं कि मैच के पहले आप अपनी शारीरिक और मानसिक तैयारी किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं?
3: सर मैच से पहले हम मेंटली फिट होना जरूरी है। प्रेशर में मैच खेलेंगे तो खेल ही नहीं पाएगा खिलाड़ी, तो पहले मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली। उसके बाद
2: जी
3: ठीक है, मैच के पहले हम थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं और वार्म अपिंग करते हैं, तो उससे ठीक है। टीम के साथ, एक साथ टीम भावना के साथ खेलते हैं
2: जी,
3: तब जाके एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए मैच में।
2: राजा जी, आप राष्ट्रीय स्तर के और मेडलिस्ट खिलाड़ी है, तो आप मेरे को ये बताएं कि जो आपको जो प्रेरणा दी है वो किस किस टीम के माध्यम से मिली है?
3: प्रेरणा सर हमको हमारे HI के फेडरेशन के भी जनरल सेक्रेटरी है तेजरा सिंह जी,
2: जी
3: उन्होंने राजस्थान लेवल पे हैंडबॉल गेम को बढ़ाने के लिए काफी संघर्ष किया है सर, और अभी भी कर ही रहे हैं। और उन्हीं के साथ हमारे जो राजस्थान सेक्रेटरी हैं यश प्रताप सिंह जी, वो भी काफी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के कई बच्चों का भला किया है और आज भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रेरणा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग हर जगह, और हर साल इसी वजह से मेडल लेके आ रहे हैं बच्चे।
2: अच्छा, हैंडबॉल खेल में कितने खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को समझाएं।
3: हैंडबॉल में सर टीम तो 16 खिलाड़ियों की होती है
2: जी,
3: बाकी मैच में 7 खिलाड़ी ही खेलते हैं
2: जी।
3: राइट पोजीशन की बात करें तो एक गोलकीपर है, लेफ्ट बैक, राइट बैक और लेफ्ट विंग, राइट विंग और पिवट प्लेयर, ऐसे करके 7 पोजीशन होती है। और बहुत फास्ट मैच चलता है सर, हर पोजीशन का अलग अलग अपनी भूमिका रहती है।
2: सिंह जी, बात करें अपन, जो आपके खेल जीवन में कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है, थोड़ा सा वो भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: खिलाड़ियों का सर संघर्ष, जीवन में संघर्ष तो सभी के होता है, हर गेम वालों का
2: जी।
3: बाकी हमारे हैंडबॉल में ज्यादा इसलिए क्योंकि लोग पॉपुलरिटी कम है, ठीक है, क्रिकेट जैसा पॉपुलर गेम है नहीं
2: जी,
3: तो गवर्नमेंट से जो भी सहायता सपोर्ट या और भी सोशल तो वो मिल नहीं पाती है सर। एक्चुअली फाइनेंशियली काफी संघर्ष करना पड़ता है हर एक स्पोर्ट्समैन को
2: जी।
3: जैसे कई क्रिकेट वाले हैं उनमें पैसा है सर, वहाँ तो ठीक है सब जगह सपोर्ट करती है, बाकी निचले स्तर पे खिलाड़ी को गवर्नमेंट सपोर्ट करती नहीं है, तो कहीं टूर्नामेंट आयोजित करवाना, टूर्नामेंट में जाना आना, तो कई चीजें जो दिक्कत करती है, आज भी वो चीजें बच्चों के साथ देखने को मिलती है
2: जी। जी चंद्रवीर जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जो एक सफल खिलाड़ी होता है एक शारीरिक ताकत के साथ और मानसिक संतुलन के साथ, तो इनका खिलाड़ियों का खान पान कैसा होना चाहिए? अभी से अगर बचपन से बच्चों को हम ये चाहें कि ये खेल में जाए, हैंडबॉल में जाए, ये किसी भी खेल में जा सके, तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए?
1: सर ये हैंडबॉल गेम क्या बड़ा रफ एंड टफ गेम है, और ये टोटल 100% बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है
2: जी।
1: इसमें आपस में आपको रश करना ही पड़ेगा अपोनेंट के साथ
2: जी।
1: खान पीने का इसके अंदर सबसे ज्यादा अहम रोल है। आपको देसी खाना
2: जी,
1: दूध दही छाछ घी क्यों हैंडबॉल में हनुमानगढ़ गंगानगर या ग्रामीण परिवेश के बच्चे सबसे हैंडबॉल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं?
2: जी
1: जैसे करौली महावीर जी,
2: जी
1: के बच्चे,
2: क्या बात है,
1: वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको खान पान उनको अच्छा मिल रहा है गांव के अंदर और शुद्ध और देसी मिल रहा है। दूध भी खा रहे हैं, छाछ भी पी रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, बढ़िया घर पे खा रहे हैं, बाहर का कोई मिलावटी नहीं खा रहे।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए उनका बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर और ये और पावर स्ट्रेंथ
2: जी,
1: फिर वो मेहनत करते हैं ग्राउंड पे तो उनका स्ट्रेंथ डेवलप होता है। खाने पीने के बाद अगर आप ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं तो आपके स्ट्रेंथ एंडोरेंस और कोऑर्डिनेशन ये अपने आप डेवलप हो जाता है।
2: बिल्कुल। अच्छा श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो टीम भावना का हैंडबॉल में कितना महत्व होता है?
3: टीम भावना कोऑर्डिनेशन जरूरी है सर, बिना कोऑर्डिनेशन के हैंडबॉल मैच क्या, टीम मैच है, तब तक हर प्लेयर संघर्ष नहीं करेगा तो टीम जीत नहीं पाएगी।
2: चंद्रवीर जी, सवाई माधोपुर जिले में देखें तो अभी जो सवाई माधोपुर की जो प्रतिभाएं हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं कि तराशा है सवाई माधोपुर जिले ने।
1: राजस्थान हैंडबॉल की तरफ से, जिला हैंडबॉल संघ की तरफ से जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने भाग लिया, जिसमें छवि श्री चौहान है जो भी गुड़गांव में डॉक्टर है, और तेजस्वनी चुंडावत है जो खुद अभी केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत है यहाँ सवाई माधोपुर, अरुण यादव है जो अभी जयपुर में है आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह है ये खुद आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ये जूनियर मेडलिस्ट है ये
2: जी।
1: तेजस्वनी चुंडावत भी सिल्वर नहीं प्लेइंग है और जितेंद्र सिंह जूनियर मेडलिस्ट है, एरंता है, ज्योति मीना है, ये इंटरनेशनल प्लेयर है, दो बच्चे रावल की
2: जी।
1: सीमा मीना है जो रिसेंटली अभी लास्ट ईयर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है
2: जी,
1: और भव्या राजावत ये भी स्कूल नेशनल है, आकांक्षा सैनी ये बच्ची भी स्कूल वो ओपन नेशनल है, अजय सैनी ये बच्चा अभी रिसेंटली वेस्ट जोन में इसकी टीम ने सिल्वर मेडल, फिर इसका इनका ऑल इंडिया के लिए चयन हुआ तो ऑल इंडिया में भी इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो 2025-26-27 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो प्रतियोगिता है उसके अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया
2: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो आप लगातार काम कर रहे हैं तो बच्चों की प्रतिभाएं निखरना एक आम और स्वाभाविक बात है। चंद्रवीर सिंह जी, युवा खिलाड़ियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: सर, युवा खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट
2: जी,
1: ये और आपकी सुबह उठना है तो उठना है, ग्राउंड जाना है तो जाना है, ये चीज जब तक ये भावना खिलाड़ी में नहीं आई, पंक्चुअलिटी मेन चीज, पंक्चुअलिटी
2: जी,
1: आप सही टाइम पे सही काम करें
2: जी,
1: टाइम से ग्राउंड जाओ, टाइम से ग्राउंड आओ, टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से पढ़ो भी सही
2: जी। बिल्कुल, पढ़ाई भी जरूरी है खेल के साथ साथ। अच्छा बात करें श्याम सिंह जी, आप बताएं कि जो भविष्य में आपके खेल संबंधी क्या लक्ष्य हैं?
3: सर, खेल संबंधी भविष्य में यही लक्ष्य है कि हमारे जिले के जो बच्चे हैं वो हैंडबॉल गेम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ग्राउंड पे ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दें और जिले का और देश का नाम रोशन करें, यही लक्ष्य आगे हम बना के चल रहे हैं और अभी भी निरंतर बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं निरंतर वो कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है उनको।
2: बिल्कुल। चंद्रवीर जी, नए जो बच्चे खेलने के उत्सुक होते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से?
1: नए बच्चों को संदेश यही है कि आप मोबाइल छोड़ें, टीवी छोड़ें और घर का बिस्तर छोड़ें, टाइम से उठें, ग्राउंड आए, मेहनत करें, जरूरी नहीं है किसी का साथ हो, टाइम पास नहीं करें, सीरियसली मेहनत करना है तो ग्राउंड आए, बाकी टाइम पास करने के लिए तो आपका मोबाइल भी है और टीवी भी रखा है।
2: बिल्कुल, आप दोनों हमारे स्टूडियो में हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी दी, कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSM।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS89.6 शहर की धुन. सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे.
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना. आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का. सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग. इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी. दिल से दिल तक.
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे.
2: दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मेहमान के रूप में डॉक्टर साहब. तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. नमस्कार जी.
3: जी, वेरी गुड आफ्टरनून.
2: डॉक्टर साहब, आज हमारे स्टूडियो में आप मेहमान के रूप में पधारे हैं. सबसे पहले तो हमारे सभी सुनने वालों को आप अपना परिचय बताएं.
3: जी, मेरा नाम डॉक्टर सुष्मिता सेन है और मैं लखनऊ से हूँ और मैंने हिंद मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS कम्प्लीट किया है और करंटली आई एम प्रिपेरिंग फॉर एम्स. अभी मैं एम्स में PG की तैयारी की सोच रही हूँ. अभी मैंने डिसाइड किया नहीं है. मैं हर एक जर्नल फिजिशियन के रूप में अभी कार्यरत.
2: बहुत अच्छा है. और आप इतनी कामयाब हो रही हैं और आज महिलाओं में अक्सर देखा जाता है बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं आज विशेष तौर से महिलाओं के जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आपसे शेयर करूंगा, उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा. तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आज आम जो महिलाओं में समस्याएं दिखाई देती है वो ज्यादातर क्या दिखाई देती है?
3: जी, आजकल बहुत जो कॉमन है वो है PCOD, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं. ये अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. जैसे रेगुलर पीरियड्स हो गए, महीना सही नहीं आता है बच्चियों का, तीन तीन चार चार महीने हो जाते हैं. तो ये बहुत कॉमन बीमारी है. इसके लिए हम एक जांच करवाते हैं, जैसे बोलते हैं हम अल्ट्रासाउंड.
2: जी,
3: अगर अल्ट्रासाउंड में क्लियर हमें नहीं हो रहा है तो फिर हम MRI करवाते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. और इसके लक्षण जानना बहुत जरूरी है. तो क्या आप इसके लक्षणों को जानना पसंद करेंगे?
2: जी बिल्कुल. सबसे पहले तो ये बताएं आप कि ये किस उम्र की बालिकाओं में ज्यादातर पनपना शुरू हो जाता है?
3: ये खासकर 14 से लेकर के 15 साल में ये शुरू हो जाता है और ये मोटापे से संबंधित बहुत ज्यादा है. जिनके घर में मोटापा है उन बच्चियों के घर में बहुत ज्यादा कॉमन है ये PCOD. ये खासकर मोटापे से रिलेटेड बीमारी है और जो चलना फिरना बिल्कुल भी नहीं है जिनके घर में, उनके घर में ये बीमारी बहुत ज्यादा है.
2: सुष्मिता जी, इसको पहचानने में कब इंसान मतलब गणना करने लग जाता है कि यह बीमारी हमारे में शुरुआत दस्तक दे चुकी है?
3: जी, जब ये बीमारी जब शुरू होती है तो महीना लगभग लड़कियों का 13 से 14 साल की उम्र के बीच में ये महीने की शुरुआत हो जाती है. तो अगर महीना बिल्कुल हर महीना सही आना चाहिए, अगर महीना सही नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत की बात है. और 90% केसेस में देखा जाता है कि लड़कियों को PCOD होता है और इसमें चेहरे पे बाल आना, दाढ़ी, ये सब लक्षण होते हैं जो बिना जांच के ही पता चल जाते हैं. गर्दन थोड़ी सी काली होने लगती है, तो ये सारे लक्षण हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे होने लगते हैं, मोटापा, पूरे बॉडी में फैट बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है. तो इससे पूरा पता चल, बाल झड़ने लगते हैं. तो ये बाहरी संकेत से ही हमें पता चल जाएगा कि ये दिक्कत है.
2: अच्छा, गाँव में आज भी अक्सर जो छोटी बच्चियां हैं वो बात करने से डरती है, अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को बताने से डरती है. तो आपकी क्या राय है इस संबंध में?
3: जी, मेरे ख्याल से ये लोगों को जागरूक हमें करना चाहिए. जितना लोग जागरूक होंगे उतना ही लोगों में ये जो थोड़ा सा शर्म जो भी है छुपाना, ये धीरे धीरे अब कम हो रहा है. जितना हम चीजों को बात करेंगे इस पे उतना लोग थोड़ा खुल के, अब तो बहुत सोशल मीडिया के थ्रू हम इन सब चीजों को धीरे धीरे हटा सकते हैं.
2: अच्छा, बात करें इसके बचाव की, तो हम शुरुआती दूर से अगर इस पे बचाव पर अगर कार्य करना चाहे जो भी महिला या बच्चियां हैं, तो मतलब कौन कौन सा खान पान रहना चाहिए, उनका क्या क्या दिनचर्या रहनी चाहिए?
3: जी, दिनचर्या में कम से कम उनको एक से डेढ़ घंटे उनको चलना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए. साइकिलिंग जितना मूवमेंट होगा, जितना, ऐसा नहीं है कि दौड़ना है, लेकिन चलना फिरना 2 घंटे तो मिनिमम होने चाहिए. और घास पे चलना, नंगे पैर, ये सब भी बहुत ही लाभ माने जाते हैं, बेनिफिट होता है इनका, और दवाइयों से भी काफी लाभ मिलता है। और वेट लॉस, सबसे पहले अगर वजन ज्यादा है तो वजन को 20-30% उनको कम करना है, और हरी सब्जियां खाना है, रोटी चावल दाल ये सब उसको कम करके हरी सब्जियों को ज्यादा वरीयता देना है।
2: सुष्मिता जी, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं या बालिकाएं अपने स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना पहले के समय में देते थे, तो क्या आप मानते हैं कि आज अपने आप के लिए भी समय निकालना जरूरी है, और जो पौष्टिक आहार है उन्हें लेना कितना उचित रहता है?
3: जी, बहुत ही जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप महंगे महंगे फल लीजिए, 400-500 रुपए खर्चा करिए, आप सीजनल लीजिए, 2-10 रुपए के, जो अभी तो सीजनल आ रहे, खीरा आ रहा है 10 रुपए में ही आ जाता है, चुकंदर आ रहा है, ये सब 20-30 रुपए के बजट है, अपने स्वास्थ्य पे लगाइए और सस्ती चीजें सीजनल फल खाइए तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: अच्छा, खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं को क्या शामिल करना जरूरी होता है?
3: मेरे हिसाब से अगर ये खासकर की अगर गर्भाशय की बात है तो उनको खासकर दालचीनी का सेवन हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज नहीं खानी है, अदरक हो गया, ये सब इनको अपने खान पान में जरूर ऐड करना है, चुकंदर तो ऐड ही ऐड करना, उसमें आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, और दवाइयों से तो काम होता ही है लेकिन खान पान जितना अच्छा रहेगा उतना बेस्ट है। और एक घंटा अगर ही समय देंगी टहलने और काम में तो फिर वो बीमारी और भी बढ़ती जाएगी। कुल मिलाकर के साइकिल, एक्सरसाइज, जॉगिंग जितना हो सके ये सब सबसे बेस्ट है। योगा, सूर्य नमस्कार अगर है तो सूर्य नमस्कार तो वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से।
2: बिल्कुल सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। मुझे आखिरी और अंतिम जो प्रश्न है मेरे मन में उभर रहा है वो ये है कि अगर पीसीओडी से ग्रसित महिला या बालिकाएं हैं तो उनको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी दवाइयों का डॉक्टर से
3: बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बीमारी है तो उसकी क्या जांच होनी चाहिए, क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एब्डोमेन, होल एब्डोमेन का करवाते हैं, तो उसमें हमें दिख जाता है कि अंडाशय का कितना साइज है, कितना बड़ा है, क्या दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है या नहीं। तो ये सबसे पहली जांच होती है जो हर महिला को पता होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन। उसके बाद फिर हम FSH करवाते हैं, LH करवाते हैं, प्रोलैक्टिन करवाते हैं, ये सब खून में ही, ये एक बार हम खून का सैंपल ले लेते हैं और उसी से ही सारी जांचें हमारी हो जाती हैं। उसके बाद अगर जांच में कुछ निकला तो सबसे कॉमन है मान लीजिए कुछ नहीं भी निकला तो भी एक OCP हम देते हैं जो 21 दिन खानी होती है महिलाओं को
2: जी।
3: हर महीने 21 दिन खानी होती है वो OCP, और साथ में हम मेटफॉर्मिन भी देते हैं जो कि शुगर की दवा है, डायबिटीज की दवा है, लेकिन हम इसमें भी देते हैं मेटफॉर्मिन नाम की दवा आती है। तो इससे जो उनके अंडाशय का जो स्वास्थ्य है वो और अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे ये बीमारी खत्म हो जाती है। और कभी भी उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे हो और बाल आए तो तुरंत उनको संपर्क करना चाहिए ऑब्स्ट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट से, ताकि जल्द से जल्द उसका इलाज किया जा सके। और अगर दवाइयों से भी ना काम चले तो हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन ड्रिलिंग। हम उनके अंडाशय में छोटे छोटे एक तरीके से हम उसको चुभाने की एक ड्रिलिंग करते हैं, ओवेरियन ड्रिलिंग। तो उससे क्या होगा, उनके अंडाशय में जो अंडे बन रहे हैं वो और तेजी से बनने लगते हैं। तो हम दूरबीन के जरिए उनके जो अंडाशय है उनके अंडाशय में हम थोड़े थोड़े बहुत निशान लगा देते हैं 10-15, तो जिससे अंडे बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।
2: बिल्कुल सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मैं चाहूंगा कि रेडियो के माध्यम से आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेगी महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए।
3: मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य और अपने खान पान को सबसे उत्तम रखना है और कोई भी तली हुई चीजें नहीं खानी है, और टहलना है, योगा करना है, अपने शरीर को कम से कम 2-3 घंटे देने हैं, और बाहर की चीज तो बिल्कुल भी नहीं खानी है, और वरना बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। हमें छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देना है ताकि वो आगे जाके खतरा ना बने।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत सटीक जानकारी विषय पर आपने हमारी सभी महिलाओं, माता बहनों को बताया। इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।
3: जी, थैंक यू सो मच।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वन्स फॉर माय डियर फ्रेंड एंड माय फेवरेट हीरो ओम कपूर। ओके, वी लव यू।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS Science Academy नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 एफएम। मैं रूबी सोनी आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ विवाह पंजीकरण के प्रमुख कानून पर। भारत में विवाह का पंजीकरण मुख्य दो रूप से अधिनियम के तहत किया जाता है। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यह कानून उन सभी लोगों पर लागू होते हैं जो हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके तहत शादी संपन्न होने के बाद पंजीकरण किया जा सकता है। और दूसरा अधिनियम है हमारा मैरिज एक्ट 1954। यह धर्मनिरपेक्ष कानून है जो भारत के किसी भी नागरिक पर लागू होता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। इसके तहत शादी से पहले रजिस्टर को 30 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। इसके कुछ अनिवार्य नियम हैं। पहला नियम है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार भारत में सभी धर्मों के विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। आयु सीमा, विवाह के समय लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं राजस्थान में अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम। राजस्थान में विवाह अधिकार पंजीकरण अधिनियम 2009 से लागू हुआ है। इसके लिए विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराने पर मात्र केवल ₹10 शुल्क लगता है, और अगर पंजीकरण आपने 30 दिन के बाद कराया है तो आपको ₹100 का शुल्क देना पड़ता है। आप अपने स्थानीय उप पंजीकरण कार्यालय या फिर ई मित्र के पास जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर हम पंजीकरण कराएं तो उसके लिए हमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं, केवल हमारा आयु प्रमाण पत्र जो जन्म के आधार पर हो सकता है। अगर वो नहीं है तो हम 10th की मार्कशीट का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दस्तावेज है निवास का प्रमाण पत्र, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। ये आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है। अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बिजली या पानी का बिल भी लगा सकते हैं। उसके बाद विवाह के प्रमाण, विवाह के प्रमाण के लिए आपको जो शादी की तस्वीरें होती हैं उसका यूज कर सकते हो। मंदिर या फिर मैरिज हॉल का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो। उसके अलावा आप

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
0: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों भी आपने सुना ना ये तरह नए कार्यक्रम है। दोस्तों थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम भूली विसरी यादें। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
0: दोस्तों फिलहाल आप इस वक्त मेरे साथ ट्यून कर रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का कर रहे हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे गंगा।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: दोस्तों अभी आपने सुना भूली बिसरी आदि कार्यक्रम, थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम बैक टू बैक कानों का।
1: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
4: ये डीएस साइंस अकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस अकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में लेकर हाजिर हूँ आपका मन पसंद कार्यक्रम राजस्थानी गीत। अभी आपने सुना बैक टू बैक गानों का ये कार्यक्रम।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर के
3: 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है,

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: लिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS Science Academy, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक, एक विद्यार्थी 98% से अधिक, 7 विद्यार्थी 97% से अधिक, 28 विद्यार्थी 96% से अधिक, 53 विद्यार्थी 95% से अधिक, 76 विद्यार्थी 90% से अधिक, 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस अकेडमी में दाखिला लें और बने टॉपर बैच।

0: दोस्तों अभी आपने सुना राजस्थानी का ये कार्यक्रम। दोस्तों इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी कतड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को समापन कर हम लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: फूला देवी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: पंजाबी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: अच्छा चलना दिया तुमने मेरा प्यार।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का।

0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: शारदा प्रसाद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप।
1: मानव राज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, गाने के बोल है कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई, ये प्यारा सा गीत मस्ती भरा आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल के बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों 4:44 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 9.6 रेडियो ओडियस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के साथ आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम।

0: जी नाम बताएं सर आपका।
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ सर महावीर जी से।
0: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना है सर कौन हो तुम जो दिल में।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।
2: हेलो

0: बताएं आपका?
1: गुलशन।
0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं गुलशन जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: इमान डोल जाएंगे सॉन्ग।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पे, बेहतरीन सा गाना।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: मौसम पे जवानी है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ही सुन।
2: सुनते रहिए दिल से दिल का 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम साबिर बोल रहा हूँ, दशहरा मैदान से।
0: साबिर जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जाने वाले तेरा खुदा हाफिज।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का।
2: रेडियो डीएस 89.6, रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। दिलीप कुमार के पिता फल बेचने का कारोबार करते थे। कहते हैं कि एक बार उनके पिता से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। वो मुंबई से भागकर पुणे चले गए। पुणे की एक आर्मी कैंटीन में उन्होंने सैंडविच बेचने का काम किया, लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद वो अपने परिवार के पास वापस मुंबई आ गए। इस दौरान एक दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात मुंबई टॉकीज के मालकिन देविका रानी से हुई। देविका ने दिलीप साहब को देखा और उन्हें अपने ही पास नौकरी दे दी। दिलीप साहब ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि एक दिन देविका रानी ने दिलीप साहब की सूरत को देखकर पूछा कि क्या वो फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हैं। हालांकि दिलीप कुमार ने तो अभिनय सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उन्हें चार फिगर में सैलरी बहुत आकर्षित कर रही थी। वहीं उनके पिता को एक्टिंग करना सिर्फ नौटंकी लगता था। दूसरी ओर देविका रानी पूरा मन बना चुकी थी कि वो यूसुफ खान को अपनी फिल्म में लॉन्च करेंगी। वो चाहती थी कि यूसुफ को कोई दूसरा नाम दिया जाए जो दर्शकों से कनेक्ट कर सके। ऐसे में उन्होंने दिलीप कुमार नाम का विचार किया। वहीं यूसुफ खान को डर था कि अगर उनके पिता को एक्टिंग वाली बात पता चली तो बहुत मार पड़ने वाली है, ऐसे में पर्दे पर नाम बदलना ही ठीक रहेगा। उसके बाद उन्हें दिलीप कुमार नाम से 1944 में फिल्म ज्वार भाटा में लॉन्च किया गया। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन ठाक दिनक दिन ताक तिनक तिन खा।
1: आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: अब आपको दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार और सायरा बानो की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ. इस कपल के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते थे. सायरा बानो और दिलीप कुमार की 55 साल की शादी हर किसी के लिए मिसाल है. 11 अक्टूबर का दिन दिलीप कुमार के लिए काफी खास दिन था. 22 साल की कम उम्र में ही सायरा बानो ने दिलीप कुमार के संग शादी रचा ली थी. जब सायरा 22 की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे, दिलीप ने प्यार के आगे उम्र को नहीं देखा. एक इंटरव्यू के दौरान स्वर्गीय दिलीप कुमार से जब पूछा गया था कि आपने कब और कैसे प्रपोज किया था, तो दिलीप कुमार बताते हैं कि एक बार वो बाहर मिले थे, तब उन्हें लगातार उनकी एक्स पार्टनर के फोन आ रहे थे, क्योंकि उनका ताजा ही ब्रेकअप हुआ था और इससे सायरा परेशान हो रही थी. ऐसे में घर लौटते समय समुद्र किनारे गाड़ी खड़ी करके उन्होंने सायरा की आंखों में देखते हुए कहा कि क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी. उनकी इस बात को सुनते हुए सायरा ने गुस्से में कहा कि आपने मुझसे पहले कितने लोगों को ये बात कही है. ऐसे में पहली बार था जब दिलीप कुमार को गुस्सा नहीं आया था. वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. इसके बाद सायरा बानो मुस्कुराने लगती है. इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद दिलीप कुमार ने किया है. आज के लिए सफरनामे में इतना ही. फिर आपसे मिलूंगी यहीं पे 89.6 DSFM पे. मैं तनीषा आपके साथ.

लाइफ में कई कई बार ना अमेजिंग सी चीजें हो जाती है, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा 89.6 रेडियो डीएस पर। अमेजिंग सी चीज हमारे साथ नहीं, हर्मीज एक इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड कंपनी है। कंपनी का नाम है हर्मीज और ओनर ने अडॉप्ट कर लिया अपने 51 साल के गार्डनर यानी अपने माली को। सारा फॉर्च्यून 1,00,000 करोड़ का जो फॉर्च्यून था उसके नाम कर दिया। क्या बात है, अब इस चीज पे एक ही बात कह सकते हैं, इसी को तो कहते हैं सफर माली से मालिक तक का। फिलहाल आपके लिए कुछ अमेजिंग गाने बैक टू बैक 89.6 रेडियो डीएसपी।

गाड़ी चलाते चलाते कई बार क्या होता है कि हम टोल प्लाजा से गुजरते हैं, और टोल प्लाजा से गुजरते वक्त अगर ये हादसा हो जाए तो ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस। और गुजरात हाईवे में किसी ने भैया फेक टोल प्लाजा सेटअप किया, जहां पे 1.5 साल तक 75,000 करोड़ रुपए उस टोल प्लाजा में भैया लोगों ने कमा लिया। क्या बात है। कई बार बिहार में रातों रात टोल प्लाजा गायब हो जाते हैं, कई बार रातों रात गुजरात में भैया टोल प्लाजा सेटअप करके 75 करोड़ रुपए ले जाते हैं लोग उठा के। एक चीज तो प्रूव हो गया, क्या इंडिया जो है वो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं। पर फिलहाल आप कुछ अमेजिंग गाने सुनो 89.6 रेडियो डीएसपी।

0: देखो लाइफ में कभी भी सैड होना तो फिर पास्ता खा लो। ट्यून इन कर रखा है 89.6 रेडियो डीएस और रिसर्च के मुताबिक पास्ता खाने से हमें भैया उतने ही अमाउंट का सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मिलता है जो हमें स्पोर्ट्स देखते वक्त या गाने सुनते वक्त मिलता है। अब गाने सुनते वक्त तो मिलता है, बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स देखते वक्त 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल। खैर फिलहाल भैया आज का शो यही तक था, फिलहाल टाइम टू गो। आपके लिए कुछ अमेजिंग गाने सुनाता हूँ मैं, बैक टू बैक अमेजिंग गाने रेडियो डीएस 89.6 पे।
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: पसंद
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ सफरनामे में आपका स्वागत है। सिनेमा के इतिहास में देवानंद पहले एक्टर थे जिनकी लड़कियों में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। देवानंद अपनी फिल्मों के साथ ही जीने के अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले देवानंद ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हुआ करते थे। फिल्म स्टार बनने की चाह में अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी और सिनेमा का स्ट्रगल शुरू किया। अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया के साथ उनका अफेयर था। यह प्यार इतना गहरा था कि जब घर वाले उनके रिश्ते के खिलाफ हुए तो सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की। हालांकि देवानंद ने अपनी को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी, वो भी फिल्म के सेट पर ही। फिर अलगाव भी हुआ और भी कई मशहूर अभिनेत्रियों से भी देवानंद का नाम जुड़ा। इतनी खूबसूरत अभिनेत्रियां जिंदगी में आई लेकिन देवानंद साहब अकेले ही रहे। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। देवानंद साहब को बचपन से ही फिल्में देखना और फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। वो रद्दी की दुकान से पत्रिका लाकर पढ़ा करते थे। रोज पत्रिका खरीद कर लाने से दुकानदार से भी उनकी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से दुकानदार रोज देवानंद के लिए पत्रिका छाट कर अलग से रख देता था और कभी कभी मुफ्त में भी दे देता था। इसी दौरान उस पत्रिका वाले की दुकान पर देवानंद ने एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरुदासपुर आ रहे हैं। तब वो वहां गए भी थे, वो उन्हें देखना चाहते थे लेकिन दूर से ही देख रहे थे। तो ये उनका फिल्मों के प्रति आकर्षण था और उनका प्रेम था। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दिल पे चले।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। देवानंद जी का एक किस्सा है कि खुद का पेट पालने के लिए उन्होंने अपना स्टैंप कलेक्शन भी बेचा था। जेब में 30 रुपए लिए आंखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देवानंद साहब सपनों की नगरी मुंबई में आए। भरी दोपहरी में फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने भी जाया करते थे। समय गुजर रहा था लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से देवानंद खुद की नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। काम की जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपए भी खत्म हो गए थे। जब उन्हें भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो एक भी रुपया नहीं मिला। भूख और काम की इसी लालसा ने उन्हें स्टैम्प कलेक्शन के एल्बम को बेचने को मजबूर कर दिया, जो उन्होंने बरसों से इकट्ठा किया था। इस एल्बम से उन्हें 30 रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई में कुछ और दिन गुजारे। फिर मिलूंगी आपसे यहीं पे सफरनामे में 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: अब उस सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ सफरनामे में आपका स्वागत है। दुनिया में कई फनकार पैदा हुए और गुजर गए, लेकिन कुछ फनकार ऐसे भी हैं जो अपने काम से अमर हो गए और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे बरसों बाद भी भूल पाना सभी के लिए नामुमकिन है। कुछ ऐसे ही थे रिदम किंग और ताल के बादशाह कहे जाने वाले ओपी नैयर साहब। नैयर साहब ने न जाने कितने गानों में अपने संगीत का जादू बिखेरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो फिल्मी दुनिया में संगीतकार बनने नहीं बल्कि हीरो बनने आए थे, लेकिन उनको रिजेक्शन मिलने लगा। रिजेक्शन के साथ उनको सलाह मिली कि कुछ और करो। कुछ और के नाम पर एक संगीती था जो वो थोड़ा बहुत जानते थे, तो हारमोनियम से दोस्ती बढ़ाते हुए उन्होंने संगीत का जादू चलाना शुरू किया। गुरुदत्त की फिल्मों के बाद तो उन्होंने कभी आर कभी पार, येलो में हारी पिया और बाबूजी धीरे चलना गीतों से धूम मचाई। ओपी नैयर का नाम फिल्म जगत में चल पड़ा। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। ओपी नैयर को संगीत की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। उनके संगीत और ताल ने बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसी छाप छोड़ी है कि संगीत प्रेमी आज भी उनके मुरीद हैं। वो अपने जमाने के सबसे महंगे संगीतकार थे। वहीं स्वर्ण कोकिला दिवंगत लता मंगेशकर के स्वरों का जादू भी हर तरफ बिखरा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संगीत का अपार ज्ञान रखने वाले दो महान गायकों के सुरताल कभी एक नहीं हुए। बड़े से बड़े संगीतकार लता मंगेशकर के साथ काम करने के लिए बरसों इंतजार करते थे, लेकिन ओपी नैयर ने कसम खा ली थी कि वो लता के साथ कभी गाना नहीं गाएंगे, ना ही उनसे कभी अपना गाना गाने के लिए कहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था ओपी नैयर और लता मंगेशकर के बीच, ये आपको बताऊंगी, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
1: चलिए बताती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था ओपी नैयर और लता जी के बीच कि दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। दरअसल ओपी नैयर 50 और 70 के दशक में अपने संगीत के दम पर कई फिल्मों को सुपरहिट करवाने और अपनी ही शर्तों पर काम करने के लिए मशहूर थे। उन्हें जिद्दी किस्म का इंसान भी कहा जाता था। अपने काम को लेकर वो बहुत अड़िग रहते थे और बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाया करते थे। बस यही वजह बन गई लता मंगेशकर से उनकी लड़ाई की। दरअसल यह मामला है फिल्म आसमान के समय का। उस वक्त लता मंगेशकर की आवाज का जादू हर किसी के सिर चढ़ा हुआ था। आसमान में सहनायिका के किरदार के लिए ओपी नैयर ने गाना लिखा और वो चाहते थे कि गाना लता मंगेशकर जी गाएं। जब ये बात लता जी के कानों तक पहुंची तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें प्रस्ताव पसंद नहीं आया क्योंकि उस समय की वो एक बड़ी गायिका थी और वो ये नहीं चाहती थी कि वो मुख्य नायिका की जगह किसी सहनायिका के लिए गाना गाएं। लता मंगेशकर ने वो गाना गाने से इनकार कर दिया। बस यही बात ओपी नैयर साहब को चुभ गई। उन्होंने इस वक्त ऐलान कर दिया कि वो लता जी के साथ कोई गाना नहीं बनाएंगे। सफरनामे में आज इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे 89.6 DSFM पे। मैं तनीषा।

0: नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ सफरनामे में आज हम बात करने जा रहे हैं गीता दत्त की। गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को फरीदपुर शहर में हुआ। 1951 में गीता दत्त के सिनेमा करियर के दौरान मशहूर निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त से मिली। फिल्म के गाने तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बनाले की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता दत्त को देख गुरुदत्त मोहित हो गए और इसके बाद गीता दत्त भी गुरुदत्त से प्यार करने लगी। 1953 में गीता दत्त ने गुरुदत्त से शादी कर ली। इसके साथ ही फिल्म बाजी की सफलता ने गीता दत्त की तकदीर बना दी और बतौर प्लेबैक सिंगर वो फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। गीता और गुरुदत्त की 3 संतान हुई जिनका नाम तरुण, अरुण और नीना दत्त है। 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। गीता दत्त का बचपन के दिनों से ही संगीत की ओर रुझान था। वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। गीता दत्त ने अपनी संगीत की प्रारंभिक शिक्षा हनुमान प्रसाद से हासिल की। उन्होंने 16 साल की उम्र में 1946 में भक्त प्रहलाद में पहला गाना गाया। SD बर्मन साहब उनके गाने से काफी प्रभावित थे। गीता में SD बर्मन को फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने गीता दत्त से अपनी अगली फिल्म दो भाई के लिए गाने की पेशकश की। वर्ष 1947 में प्रदर्शित फिल्म दो भाई गीता दत्त के सिने करियर की अहम फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में उनका गाया यह गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। फिल्म दो भाई में अपने गाए इस गीत की कामयाबी के बाद बतौर प्लेबैक सिंगर गीता दत्त अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई। गीता ने SD बर्मन के लिए 72 गाने गाए जिनमें 43 सोलो थे। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सफरनामे में बात हो रही है गीता दत्त के बारे में। 1957 में गीता दत्त और गुरुदत्त की विवाहित जिंदगी में दरार आ गई। गुरुदत्त ने गीता दत्त के काम में दखल देना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि गीता दत्त केवल उनकी बनाई फिल्मों के लिए ही गीत गाएं। काम के प्रति समर्पित गीता दत्त पहले इस बात के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन बाद में गीता दत्त ने किस्मत से समझौता करना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे अन्य निर्माता निर्देशकों ने गीता दत्त से किनारा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद गीता दत्त अपने पति गुरुदत्त के बढ़ते दखल को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने गुरुदत्त से अलग रहने का निर्णय लिया। इस बात की एक मुख्य वजह यह भी रही कि उस समय गुरुदत्त का नाम अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ जोड़ा जा रहा था, जिसे गीता दत्त सहन नहीं कर सकी। गीता दत्त से जुदाई के बाद गुरुदत्त टूट से गए और उन्होंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया। 10 अक्टूबर 1964 को अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियां लेने के कारण गुरुदत्त साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता दत्त को गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने भी अपने आप को नशे में डुबो दिया और उसके बाद वो बीमार रहने लगी और गीता दत्त की 20 जुलाई 1972 को मृत्यु हो गई। फिर मिलूंगी आपसे यहीं पे 89.6 DSFM पे, मैं तनीषा आपके साथ।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून 99.6 रेडियो डीएस कांगा पोर्ट सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त आकाश। और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।